स्वरूपे सदा हम संगे पंगन होते देख गुप्त है सत्य तिरंगा पदस नानक गुरु गोविंद सिंह सरकार की सहाय दरबार में तेरु दरबार सत्कम से निरंकारा लक्ष्मी कड़ी तुम्हारे दरबार।

जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में बिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनू का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मछ केते ऊन को करत भच केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नाभ बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहा थल कहा गगन के गौन कहा काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज रीण ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केते रूवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग बासी केते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे जो हजार बोझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पाच हारे पंडित तप

न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखंग अभेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छेयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट गोटे उपाय उसारे गड़े फिर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परे यंग परापरं पूरण प्रकाशी न आदं न व्यादं अगाधं स्वरूप अखंड प्रतापाद अच्छय विभूते न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं स नेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाते न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंकं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विखादं अछेदं अभेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्धं।

चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखदि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सादकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के

कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चितरंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर के पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेच भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला थरे छत्रधारी कहूँ राज साजं धीराजाधिकारी

देह राग न रूप न रेख रुखंग देह ताप न साप न शोक सुखंग देह रोग न शोक न भोग भुयंग देह खेद न भेद न छेद क्षयं जेह जात न पात न मात पितंग जेह रज्यंग छत्रिय छत्र छितंग जेह राग न रेख न रोग भणंग जेह द्वैख न दाग न दुख गणंग जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नवखंड सचियो रजता मस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रुबिंद नगिंद नगं श्रेय जाच गंधर्व मणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड कतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न व्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुअंग जेह जंपह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जेह अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास तंग रज रोज एकादश।

भूत मतंगन गाध व्याद अनाद मतंगन खेद भेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिद्ध अधोमुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकण धरम सफेत जय एक चित्त कृपा निध को जप है तो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुति जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है।

अनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोग ताग दग है, अभूत ब्रह्म वेग है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेक शेख भेक है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिबीजमान के भिखे सदीव करम भरम है, अद्वैख है, अभेग है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में।

है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाव है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाव है, न छल है न छिद्र है न

रोग है न सोग है न भेद है न भंड है, न अंग है न रंग है न संग है न साध है, प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है, न शीत है न सोच है न घ्राम है, न शीत है न सोच है न घ्राम है, न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है, न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है, न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है, न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है, न काल है न बाल है।

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत मय जयगाथ भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत नाद श्रीपत परम पुरख भंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूमा का जले थले महबानी जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट

सत द्वापर तृतीया कलयुग चतुर काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार, हर हर थके सुबह नहीं पाई ये तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सुबह कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोद सोद थके महासुर पायो नह पार। त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन, सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन। दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जी तब कह मरण है, कवन सुरक कह नरक, को सुखुड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अवतरक। दोहरा को निंदा जस है।

डावरू डबंगे बबर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायद चमके भूखण दमके अत सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रंभक बर्दन त्यात जिणंग चंडा सुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भूमा कासल ऊर्ध्व थे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूट गते रक्ता सुर आचन युद्ध ब्रह्माचरण नराजन धर्म वृते श्रोणंत चिंतीवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्ट उपारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सस प्रहारण साध मते।

चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष आरोधन क्रूर प्रत्यय धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रताहन गाढ़ मते जय जय हो से मैघासुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते विडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते।

दामनी प्रकाशे उन्तनासे ज्योत प्रकाशे अदल बले दान वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रधर खंड बितल तले अष्टायत वाहन बोलने वाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट व्रता है अर्दल गाहे दुख हरे गंजन घुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीले गर्भ गहीले ज्योत जतीले तुंद मते अष्टायत चमकण शास्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुक डुके दमंगे बाघ बंगे हुजा फुरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति उदाहरण एक भट्टे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंड।

निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन निभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार। जानी न जाए जय रूप रेख कहे वास दास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहे पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय जकर चेहर नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल। ऊर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पार युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख तहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत। त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नित संतु बार गनी मन गारे पछ पशु नग नाग नरात सर्व समय सबको व्रत पारे। पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहार। दाहत है दुख दुखन कौदल दुजन के पल मै दल डारे खंड खंड प्रचंड पहाड़ पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमावत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज विलोकत राजक रोख रुहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अहं देव न भेव लख्यो भ्रम शिव भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना।

लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मा पद ये है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त अगे है छे है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पदमा बदले है। रोकंते और सोकंते जल जोगंते वह भांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत घाव तउ तन एक न लाग न पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाव समूहन भेटन पावे। और की बात कहाँ कह दो सौ सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा का सब ताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कते वर भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब है पचहारे। वेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाद अभेख अद्वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुतान महाव्रत धारे। देश विदेव कर भेष तपोधन केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख गारे। दीन दयाल अकाल।

अत्र के चलैया क्षेत्र छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया ओ विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरब आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेली तेरी मानसो तपस्या करे दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेले माघ देश के मंगेली वीर भंग सी बुंदेल बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चिन मचीन के शीस ने आवे तिब्बती दे आए दुख देह के तलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो दिन पूर्ण प्रताप वायु सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार दे जुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचत दाही चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है। करते हैं विचार पन पूर्ण को पावे पारता ही ते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जय के बाप हूँ न मायता के पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के कजानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है या देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को देवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाइये न पार पारावार हूँ को पार जा को की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हब सी हल विध्यावे पूर्वी न पार पावे।

है सेवक के अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है थरैया द्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के। हंसनी सी सी हरुम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चाली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊगढ़ रूपा कैसी राम गुर सोरा सी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदगढ़ के रत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा से हिमालय हर हार सी हल्बा ने रहस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान सी विलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। भखरी कंधारी गोर गखरी गिरदे जचारी पौन के हरि तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र देता बिना कीरत।

बहुत विचारों साध संग साध संग साध संग साध संग साध संग इस मन धारो मन धारो ही प्राप्त मानुख दे हुरिया मानुख दे हुरिया गोविंद लड़की ए तेरी बढ़िया लड़की ए तेरी बढ़िया लड़की मिल साथ संग

काहे रे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकण को सिव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जावुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आ करख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों। जेते बदन सृष्ट सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महा मूड कश भेद ना जानत। महादेव कौ कहत सुदास, निरंकार का छीनत नहभ। आप आपनी बुध है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखान जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्बज खान बहर रच दीनी। काहूं फूल राजा हुए बैठा, काहूं सुमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच्छ करो ऋण घाता। जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छै सकै न कोई। एक बार जिन्त मैं संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैल हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल्विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छाय करता। श्री अजदुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशत फल पावे सोई, दुख नात सह व्यापत कोई। अड़ल सुन

कह चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपाई मैं नागन सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं कान सुने पहचान न तिन सो लिवलागी मोरी पग इन सो

द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहेब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संहारो।

आए। अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्यान हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय। सब सिखण को सो

नाहि अवर बासना नाहि प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद।

तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम री कर मैना कहो।

0: प्रभु के सिमरन गर्म न बसे,
1: प्रभु के सिमरन धूप जम न से,
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे,
0: प्रभु सिमरन कद भी करने लागे,
1: प्रभु के सिमरन अंधी जागे,
0: प्रभु के सिमरन भव न व्यापे,
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभु के सिमरन साध के संग
1: सर्व निदान न कर रंग,
0: प्रभु के सिमरन रत्य सिद्ध न

0: से जन प्रवान
1: रब को सिमर से पूर प्रधान
0: रब को सिमर से सब मोहताज
1: रब को सिमर से सरब के राजे
0: रब को सिमर से सुखवासी
1: रब को सिमर सदा विनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जनकी मगर वाला
0: रब को सिमर से पर पुकारी
1: रब को सिमर सत बलहारी
0: रब को सिमर से मुख सुहावे
1: रब को सिमर

0: रत्न बुझावे
1: नाम जपता रावे
0: जी मार्ग जात के ला
1: नाम सबो सुवेला
0: ऐसा नाम सदा त्याये
1: नाना गुरमुख परम दत्ताये
0: सोटत नई कोट लगवाए
1: नाम जपता पार पराई
0: अनभिगंज आय संगारे
1: नाम तत्काल उदारे
0: अनक जोन जन में मर जा
1: नाम जपता वे विश्राम
0: ओ मेला मलकबो न तोवे
1: नाम कोट पाप होवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: नानक

0: प्रभु व्याप्त
1: अनंत तनकत कृष्ण नंद रापे
0: एक अनेक अगन नहीं पूजे
1: कोट पाद घन सीजे
0: छूट नाही उपप्यास
1: मोह व्यापे माया जाल
0: अवर कर तू सगली जम डाल
1: गोविंद भजन मिल दिल नहीं माने
0: हर का नाम जब दुख जाए
1: नान

0: अपने सो भालो रे
1: सात संज्ञा हो में चोरे
0: को जन्म मरण ते डरे
1: साधना की सरनी परे
0: जन को प्रभ दर्श प्यासा
1: नानक ताके भल भल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सात संज्ञा का मिटे अभिमान
0: आपस को जो

0: जन सम दृष्टि
1: नानक पाप नहीं ले पा
0: निर्धन को धन तेरो नाम
1: नितावे को नाव तेरा
0: निमाने को प्रभु तेरो

0: आज सवार सिंगारिया
1: गर्भगन में जिन हो बारिया
0: बस्ता तुझे प्यारे
1: दूर सुख सुध
0: पर साख सन
1: मुख प्या भेंट को दे
0: निर्गुण गुण कछु न बूझे
1: तो नान सीजे
0: प्रसाद हर पर सुख
1: बसूर प्रात भी पंता सखसे
0: ये प्रसाद पीवे सी तल
1: सुखदाई पवन भाव कमला
0: ये प्रसाद पोगे सब रस
1: सकल सामग्री संसार बसा
0: दीने हाथ पाव कन्या तार
1: त्याग वर्ष रचना
0: दुख मुड़ान।

0: नानक राखन हार पार साचो झूठ संग मचे जो मन सो दूर पराने संसाय तिस पर हरे
1: चंदन लेप उतारे तो
0: कदमी बसम संग होए नानक काट लियो प्रभु दयाल
1: दूत पशु की मान सजा
0: लोग पचारा करे दिन रात
1: पार पेक अंतर मन माया
0: चपस नाई कुछ करे छपाया
1: पार ज्ञान ध्यान इसना
0: अंतर व्यापे लोग सुहान
1: अंतर गण बार तन सुहान
0: गल पातर कैसे तरे आता
1: जाके अंतर बसे प्रभाव
0: नानक तेज से समान
1: सुनंदा कैसे मार्ग पावे
0: कर गलो और निभावे
1: बुजार्थ बुझे डोरा
0: निश्चय तो समझे पोरा
1: आप इतने बदगावे गुंगा।

0: रन दिन रहन बिरथा बिहार
1: मैं बिना जो कहती जाए
0: भजन बिन बिरथे सब काम
1: जो कृपा के निरार धाम
0: जय घट वसियो और नाव
1: नानक ताके भल भल जाओ
0: तवर कच और कमावत
1: मन तीर्थ को गण लावा
0: अनहार प्रो पर भी
1: बार बेक न काओ बे
0: अवर उपदेश आप न करे
1: आवत जावत जन में मरे
0: जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीख करे संसार
0: उपाने तिन प्रभु जाता।

0: प्रभु शरणागति
1: कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे
2: जय प्रसाद क्षेत्रीय अमृत खाए
1: निष्ठा गुरु को रख मनवावे
2: जय प्रसाद सुगंध तन लावे
1: इसको सिमर परम गत पावे
2: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
3: जय सदा मन अंदर
2: जय प्रसाद गृह सुन सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
2: जय प्रसाद रंग रस भो
3: दान सदा
1: जय जावन जो
2: जय प्रसाद पाठ पटंबर अड़ावे
1: इसे त्याग कर तवल लुभावे केवल पाव ब्रह्म नानक पसती घर जावे लीलाओं सने
2: प्रसाद तेरा ओला रहे
1: मन चुक पावे हर जस कहे
2: प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके
1: मन सब निपटा कु प्रभुता के
2: प्रसाद
1: प्रभु जे नानक ताकी भगत करे
2: प्रसाद आभूषण पहरे
1: मंत्र सिंह को आलस की जय
2: प्रसाद अश्व हस्त
1: मंत्र सारे
2: प्रसाद भाग मिलक
1: राग प्रभ अपने मना
2: तेरी मन बनत बनाए
1: उठत बैठ सती से जाए
2: जो एक
1: हुआ नानक तेरी रखे
2: प्रसाद करे पुण्य
1: मन आठ पर कर दिशा ध्यान
2: प्रसाद तू आचार
1: व्यवहार को सा सा चितारी
2: प्रसाद

0: जय प्रसाद पैके बिस्मार
1: जय प्रसाद
0: सुसा जय प्रसाद
1: हसत कर चले
2: जय प्रसाद संपूर्ण फल
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुसा समाव
1: ऐसा प्रभु त्याग और कत
0: लागो बोल प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रकट संसार।

0: नानक जाप जपे जब सोए आप हमारे जो हर गाओ
1: कृपा ते होए प्रकाश कमल विकास
2: प्रसन्न बसे मन

0: कब मोहतारी लावे ध्यान, कब सिख साधक मो ज्ञान, अनंत जोर में भर मिया जो प्रभावे तिवे नचावे, नानक दूजा वर न कोए उस्ताद ते बोर न होवे,
1: सदा नहीं विनाश
0: सदा बसे पाप के संग।

0: लक्को उठता
1: रिपदनावे माया पाचे पावे
0: अनिक पोक विख्या के करे
1: न तृप्तावे कब कब मरे
0: बिना संतोख नहीं कोरा
1: सुपर मनोरथ विदे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख हो
1: बड़ बागी किसे परापत होए
0: करन करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक कर जा
0: करन करावन करने हार
1: इसके हाथ कहां भी जान
0: जैसी दृष्ट करे तैसी

0: अष्टपदी
1: संके दुखन अर जा घटे
0: संके दुखन जब दे नहीं छूटे
1: दुखन सुख सब जाए
0: संके दुखन नरक में पाए
1: संके दुखन मत होए मलिन
0: संके दुखन सो बाते हैं
1: संके हते को रखन को
0: संके दुखन दान भ्रष्ट होए
1: कृपाल कृपा ये करे
0: नानक संत निंदक भी करे
1: संके दुखन ते मुख पवे
0: संके दुखन काज जो नवे
1: दुखन सब जोन पाए
0: संके दुखन त्रिगुण जोन के पाए
1: संके दुखन कृष्णा में जले
0: संके

0: गौड़ान लागे
1: संत दुखी को सब त्यागे
0: दुखी महा अहंकार
1: संत दुखी चला भिकारी
0: दुखी जन में मरे
1: संत की दुख ना सुख ते टरे नानक संत पावे ता लय मिलाए
0: आज बीते टूटे
1: संत का दुखी के कान न पहुँचे
0: दुखी को उद्यान ब्रह्मा
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: दुखी अंतर ते दो
1: जो सांस बिना मृतक केलो था
0: दुखी के जड़ किचना
1: आपन

सत सत परसन हार दर्शन सत सत पेखन हार आप सत सत सबदारे सबद सत सत प्रभ वक्ता भोजन हार को सत सब होए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया जाके हृदय विश्वास प्रभ

0: ठाकुर को सेवक जाने संग,
1: प्रभ का सेवक नाम के रंग,
0: सेवक को प्रभ पालन हारा,
1: सेवक की राखे निरंकार,
0: सो सेवक जिस दया प्रभ धारे,
1: नानक सो सेवक साथ साथ समारे,
0: अपने जन का पर्दा ढाके,
1: अपना सेवक के सर पर राखे,
0: अपने दास को देव डाए,
1: अपने सेवक को नाम जपाए,
0: अपने सेवक की आपत राखे।

0: पैर प्रभ से हजूर मन मेरे तिन की ओट ले
1: मन अपना तिन जन दे
0: जिन जन अपना प्रभु पचाता
1: तो जस रक्त हो का दाता
0: तिस की

0: जिस धन को चार कुंट धावे
1: सेवा दे पावे
0: जिस सुख को नित बाछे मीत
1: सुख साधु संग परित
0: जिस शोभा को करे भली करनी।

0: सरस वेद विचारे
1: हर की भगत करो मन लाए
0: मन बचत नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरे धना
0: तू क्या लपकाए मूरख मना
1: सूत मीत कुटुंब अरबंता
0: इनते को तुम कौन सनाता
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते को कौन छुटकार
1: अस हस्ती रथ सवारे
0: झूठा ढंग झूठ बसारी
1: जिन दिए तिस बुझे न बिगाना
0: नाम बिसा नानक पस्ताना
1: गुर की मत तू ले आने
0: भगत बिना बहु डूबे सियाने
1: हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माने
0: जनम जनम के खिल बिक जाए
1: आप जप हो और नाम सार भूत सत हर को
0: नाम
1: गावत तेरी उतर समाए
0: जाया
1: अचिंत बसे सुखना।

0: सिमर सिमर सुख
1: पाओ, जपो नाम जपाओ,
0: भाई तरे संसार
2: दिन भक्ति तनो शिशा,
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम,
2: बूढ़ा जात पाए विश्राम,
0: सकल दुख का होवत नाश,
2: नानक नाम जपो गुणता,
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
2: मन तन अंतर ऐसु आओ,
0: नेत्रों पे एक दरस सुख होए,
2: मन विकसे

0: दर्शन दीन दयाल
1: भगत वचन सदा कृपा
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व घटा करत प्रतिपा
0: पुर कारण करता
1: भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो पैसो होए पुनीत
1: भगत भाव लाव मन हित
0: हम निर्गुणिया नीच जान
1: नानक तुमरी शरण पर भगवान
0: सर्व बैकुंठ मुकुट मुख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बड़ी आई
1: हर के नाम की कथा मन भाए
0: वो जन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: सुकरणी शोभा धन
1: हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत्र
2: साध संग प्रभ देओ निवास
3: सर्व सुख

0: जाए
1: जिसका किया सब परवाह
0: कोई प्रसाद न क्यों जान
1: सदा सुख हो
0: मिलाए प्रभु
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुकुल हृदय भगवंत
1: तन तन तन जनाया
0: जिस प्रसाद

0: सास सास सिमरो गोविंद
1: मन अंदर के होते चिंदास
0: अनित त्यागो त्रंग
1: साधना के धुन मन मंगल
0: आप छोड़ बेंती करो
1: सास संगत सागर करो
0: हर धन के बार लो।

0: सिमर नाम बारंबार,
1: नानक जी का ये आधार,
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: हम ले लाले रतन,
0: सुनत कमावत होत उदार,
1: आप तरे लोक निसार,
0: सफल जीवन सफलता का सांग,
1: जाके मल्ला का हरण,
0: जय जय शब्द अनाहत वाजे।

गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय, ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए। चार कुंट दें दिस भ्रमे तिस बिन अवर न कोए, वेद पुराण

जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गा। गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए सा।

आप तजो गोविंद भजो भाव भगत परवेश लाभ मिले तो टाहिरे हर दर गए पतिवंत राम नाम धन संचवे।

0: बेदा
1: जाको बे मन पावत बेदा
0: ताको कह पावन अनुमानत
1: मूढ़ कछ भेद न जानत
0: मां देव को काटस दाचो
1: निरंकार का कीनत नह भी
0: आप आपने बुझे जेते
1: बनत भिन्न भिन्न कहते थी
0: तुमरा लखान जाए पसारा

कोई तपस्या है, रखता है दाए जब काला, कृपा दिसन जाए नेर हो, जीत जीत कर मौत होए, एक बार जिन

परम सत्कार योग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता पंथ दे वाली अमृत के दाते साहेबां दे पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहेब विखे आप सारे ही पावन हाजरियां पर रहे हो। आप सारे ही धनता दे जोग हो, बड़े भागशाली हो जो अपने प्यारे दे याद दे विच जुड़न वास्ते बैठे हो। साहिबां दे पावन शहीदी नूं समर्पित पिछले तीन दिनों तो समूह साध संगत वालों गुरद्वारा बोर्ड वालों श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ चौपाई साहिब जी दे पाठ उपरंत कथा विचार लगातार हुंदी आ रही है। अज चौथा दिन है। कल आने वाले कल नूं साहिबां दे पावन शहीदी दा गुरपुरब समुचे सिख जगत दे अंदर बड़े प्यार सत्कार ते श्रद्धा नाल मनाया जावेगा। आओ आपां अपने समय दे विच्चों थोड़ा जा समा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन चरणा दा ध्यान करदे होए सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे शहीदी दे बाबत कुछ विचार वटांदरा करिए। जे ते सतगुरु दे कीते होए जड़े उपकार हन उन्हां दी जे गिणती मिणती कीती जावे तां कोई साडे कोल संख्या नहीं कि असी गिणती कर सकीए। साडे कोल कोई भाषा नहीं जिस भाषा दे विच आपां

प्रथम भगाती सिमर के गुर नानक लई धियाए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। हर जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण धियाई है जिस दिठे सब दुख जाए। ते एक बहादुर सिमरिए घर नौ निद आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर जी पिता पंथ दे वाली, अमृत के दाते शमशेर बहादुर जियो, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे आत्मक स्वरूप जुगो जुग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जागती जोत जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, सब थाई होए।

सच्चे तुदाखल करोड़ सच्चे संतान सच्चे शब्जो सच्ची तेरी सुख सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमै सो कच निकच महला।

अंडा जेरत बुझा खाने सित जा सुमित जाने नानका शरा मेरा जनता नानक जंत पाए कैश माला शबना जिन करता करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरे स्वस्थ।